अल्पबुद्धि से माता गांधु तेरा गीत, बारों महीनों की तेरी सुनो नुवेदित। जय जय हो जगती माता लाता नंदमाई, जय जय भवानी भवानी लाता नंदमाई, जय जय भवानी। तेर नामों का गीत गोला तेर सुनो लारीत, तेर नामों का गीत गोला तेर सुनो लारीत। माघ की सष्टमी महामाया खुलदा तेरा द्वार, जय जय भवानी भवानी खुलदा तेरा द्वार, जय जय भवानी। ताम विजय सर्वजनु भूला नगाड़ा, ताम विजय सर्वजनु ढोल नगारा। तेरा मंदिर माँ मेरी माया तब खुल दा द्वार, जय जय भवानी भवानी तब खुल दा द्वार, जय जय भवानी। घूमा पूजारी नयंदु देखा रांदा लोग, घूमा पूजारी नयंदु लखा रांदा लोग। लाड़ू फापर तेरो चढ़ दो तब भोग, लाड़ू फापर माता चढ़ दो तेरो भोग। जय जय हो जगदपानंदा ल्योला तेरो नाम, जय जय भवानी भवानी ल्योला तेरो नाम, जय जय भवानी।